0: साथै हिन्दी कथानाक चलचित्र दृश्यम 3 पनि भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ। हेरेर भरपूर मनोरञ्जन लिनुहोस्।
1: तू गोवा का सबसे बड़ा हार्ड वर्किंग क्रिमिनल है।

0: साथै हिन्दी कथानक चलचित्र दृश्यम 3 पनि भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ। हेरेर भरपूर मनोरञ्जन लिनुहोस्।
1: तू गोवा का सबसे बड़ा हार्ड वर्किंग कैमरा है।

0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सबै कनेक्टेड
1: महाचार महापहार
2: शाओमी वा रेडमी को फोन किन्दा उपहार नै उपहार यो दशैं तिहार मा शाओमी वा रेडमी को लेटेस्ट फोन किनी एमआई स्पेस आईएमईआई नम्बर टाइप गरी व्हाट्सएप मार्फत पठाउनुहोस् र हरेक दिन 8 जनालाई रेडमी बर्स 6 प्ले हरेक हप्ता 10 जनालाई रेडमी वॉच 6 एक्टिभ अनि बम्पर मा 4 जना विजेतालाई थाइल्यान्ड हॉलिडे यो योजना मंगसिर 9 गते सम्म मात्र आजै नजिकैको शाओमी डिलर मा सम्पर्क गर्नुहोस्
1: शाओमी किन्दा उपहार एभ्रीडे
3: मध्य पश्चिम च्याङ च्याक यति बेला बिहानको 10 बजेको छ।

आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद को आवाज जो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: बजाज जस्ता विश्वसनीय ब्रांड का होम किचन एप्लायंस अब एक
1: दसैं तिहार विशेष अफर
0: ईएमआई र एक्सचेंज सुविधा
1: सीमित अवधि को लागि चाँदी को सिक्का र एयर फ्रायर जित्ने मौका
0: 56 जनालाई वीकली विनर प्राइज
1: 7 जनालाई बम्पर प्राइज मा यशोदा रेफ्रिजरेटर
0: ग्रैंड बम्पर प्राइज मा यशोदा फ्रंट लोड वाशिंग मेसिन जित्ने मौका अब हाम्रै घोराई शहर मा बिग डिजिटल को नया शाखा विस्तार बिग डिजिटल तपाईको लागि
2: सम्पर्क स्थान लखन पार्क घोराही 14 दाङ
0: सम्पर्क नम्बर 082-563-0001 र मोबाइल नम्बर 97155-63-001
3: यो हो रेडियो मध्य पश्चिम FM 91.4 मेगाहर्ज।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था रिलायबल लाइफ सधैं भरिलाई।
1: अब दाँत भर्ने, दाँत फाल्ने, नयाँ दाँत राख्ने, दाँत सफा गर्ने, चम्किलो बनाउने, बाङ्गोटिङ्गो दाँत मिलाउने, इम्प्लान्ट सर्जरी आदि दाँत मुख गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार एकै ठाउँमा। प्राइम डेन्टल क्लिनिक
2: नयाँ अत्याधुनिक बिरामी मैत्री क्लिनिकमा अनुभवी चिकित्सक डाक्टर आयुष गौतम तथा अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा उपचार भइरहेको छ। स्थान घोराईदाङ तुलसीपुर चोकदेखि 50 मिटर पश्चिम रोडमा। सम्पर्क नम्बर 082-591-7994, मोबाइल नम्बर 98-22-87-74-94।

0: गांव रेडियो मेरो एवरेस्ट
1: मध्य पश्चिम ट्रांग चेक यति बेला दिउँसोको एक बजेको छ।

वायनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट को 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सबै कनेक्टेड।

0: రంగా ఉండేది మీరు ఎవరెస్ట్.
1: शाओमी व रेडमी को फोन किन्दा उपहार नहीं उपहार
2: यो दसैं तिहार मा शाओमी व रेडमी को लेटेस्ट फोन किनी एमआई स्पेस आईएमईआई नंबर टाइप गरी व्हाट्सएप मार्फत पठाउनुहोस् र हरेक दिन 8 जनालाई रेडमी बर्ड 6 प्ले हरेक हप्ता 10 जनालाई रेडमी वॉच 6 एक्टिव अनि बम्पर मा 4 जना विजेतालाई थाइल्यान्ड हॉलिडे यो योजना मंगसिर 9 गते सम्म मात्र आजै नजिकैको शाओमी डिलर मा सम्पर्क गर्नुहोस्
3: शाओमी किन्दा उपहार एभ्रीडे बम्पर मा थाइल्यान्ड हॉलिडे
4: मध्य पश्चिम टाइम चेक यति बेला बेलुकीको 5 बजेको छ।

0: वायनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सब कनेक्टेड
1: स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे सूचना
2: वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा महिला कैंसर रोग सर्जन बीपी कोईराला मेमोरियल कैंसर अस्पताल चितौन में पूर्व कार्यरत डाक्टर प्रवीण योगी को हाई 15 सड़क विभाग रोड में दिव्य फार्मेसी में बिरामी को चेक जांच गरिने हुँदा समयमै नाम दर्ता कराई विशेषज्ञ सेवा को लाभ लिनुहोस् र आफ्नो रोग को पूर्ण निदान गर्नुहोस्।
1: विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा दिइने सेवाहरू
3: महिनावारी में समस्या महिनावारी रोकिनु
1: श्वेत पर्दरक पिसाब पोल्ने समस्या
3: पाठेघर में समस्या पाठेघर खस्ने को समस्या
1: पाठेघर में मासु पलाउने
3: निसन्तान महिला को चेक जांच
1: स्तन कैंसर पाठेघर में कैंसर भय नभएको चेक जांच लगायत का महिला संबंधी संपूर्ण रोग आधुनिक मेसिन द्वारा चेक जांच गरिनुका साथै उचित परामर्श का लागि सम्पर्क गर्नुहोला।
4: बिरामी जांच होने मिति यही असोज 30 गते शुक्रवार
1: सम्पर्क दिव्य फार्मेसी घोराई 15 सड़क विभाग रोड दाङ फोन नम्बर 082-595-410 मोबाइल नम्बर 98-478-28-913 र 98-095-12-871
3: फोनबाट पनि नाम दर्ता गर्न सकिनेछ।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सधैं भरिलाई।
1: अब दाँत भर्ने, दाँत फाल्ने, नयाँ दाँत राख्ने, दाँत सफा गर्ने, चम्किलो बनाउने, बाङ्गो टिङ्गो दाँत मिलाउने, इम्प्लान्ट सर्जरी आदि, दाँत मुख गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार एकै ठाउँमा। प्राइम डेन्टल क्लिनिक।
2: प्राइम डेन्टल क्लिनिक नयाँ अत्याधुनिक बिरामी मैत्री क्लिनिकमा अनुभवी चिकित्सक डाक्टर आयुष गौतम तथा अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा उपचार भइरहेको छ। स्थान घोराईदाङ तुलसीपुर चोकदेखि 50 मिटर पश्चिम रोडमा। सम्पर्क नम्बर 082-591-7994, मोबाइल नम्बर 98-22-87-74-94।

0: सुरक्षित जीवन जिउन जीवन बीमा जरुरी छ। रिलायबल लाइफ सधैँ भरिलाई।
1: अब दाँत भर्ने, दाँत फाल्ने, नयाँ दाँत राख्ने, दाँत सफा गर्ने, चम्किलो बनाउने, बाङ्गो टिङ्गो दाँत मिलाउने, इम्प्लान्ट सर्जरी आदि, दाँत मुख गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार एकै ठाउँमा। प्राइम डेन्टल क्लिनिक।
2: प्राइम डेन्टल क्लिनिक नयाँ अत्याधुनिक बिरामी मैत्री क्लिनिकमा अनुभवी चिकित्सक डाक्टर आयुष गौतम तथा अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा उपचार भइरहेको छ। स्थान घोराई दाङ तुलसीपुर चोकदेखि 50 मिटर पश्चिम रोडमा। सम्पर्क नम्बर 082-591-7694, मोबाइल नम्बर 98-22-87-74-94।

0: साथै हिन्दी कथानाक चलचित्र दृश्यम 3 पनि भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ। हेरेर भरपूर मनोरञ्जन लिनुहोस्।
1: तू गोवा का सबसे बड़ा हार्ड वर्किंग कैमरा है।
2: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज, आवाज हिंद को आवाज, जो हो रेडियो मध्य पश्चिम FM 91.4 MHz।